पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे न, अब मैं कौन उपाव करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परो, जन्म पाए किश पलो न कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे न, पाई सुख तां उना ही पाया है जिन्हां ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तां सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना है प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं, दुनिया दे कर्म हैं, पुन दान जप तप इन्हां नूं फल नहीं लगन वाले। कहो नानक एह तत बिचारा, जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है, तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है, कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है, हर को नाम जप निर्मल कर्म, प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो, प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन, ते जीरो जितनिया मर्जियां लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी, जदों तू नाम दा एका लावेगा तां ओ जीरो दस बोलेगी, सौ बोलेगी, हजार बोलेगी, फिर तेरी मेहनत है, जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वध दे जानगे, तेरा जीवन उच्चा सुच्चा होंदा जाएगा। इसलिए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने, मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानू दस रहा, जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उना दा तत मैं तुहानू दस रहा हां कि बिना सिमरन दे, बिना भगवान दे भजन दे छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए कहो नानक ए तत विचारा।

छोड़ चले अंत तक भजदा रहिंदा है मनुख होर किठी कर लवां होर कितों मिल जांदी पर पता उदों लगदा है जदों अंत समा आ जांदा है चल भाई फिर छोड़ चलिया ता फिर पछताना जदों सब कुछ छोड़ना पै जांदा फिर पछतावा लगदा है ओ मेरे मन तू जेड़ा धन इकट्ठा करना सी ओ तो की

ने तकिया कि एक गरीब आदमी जिदे चेहरे ते बड़ा जलाल है, बड़ा खुश लगता है। मन विच सोचिया कि वाहिगुरु ने राज भाग दुनिया दे सुख दिते हन, मेरे अंदर एडी खुशी नहीं जितनी इदे मस्तक तो प्रतीत हो रही है। राजा पुछन लगा इसनू, क्यों भाई तू केड़ी खुराक खांदा है, कितने कुदा काम कर लेंगे। ए गरीब आदमी कहने लगा, मैं अठ आने की मजूरी करदा रोज, अठ आने नाल गुजारा हो जांदा, महाराज बड़ा वधिया हुंदा। दो आने मैं अपना उधार भी लहांदा हां, दो आने उधार देंदा भी हां, दो आने जमा भी करदा हां, ते दो आनिया दे नाल बड़े आनंद नही, कोई कमी है ही नहीं। राजा हैरान हो गया, एडा खुश दो आनिया दे नाल, ते उधार किथे लहाना है भाई तू किनू देना है। आख्या मेरे माता पिता घर हैं, उन्होंने मैनू पालिया पोसिया है, मैं उन्हों का करजाई हां, इसलिए दो आने उन्हों की सेवा विच रोज लाना, ते उधार देंदा किनू है, अखे मैं अपने बच्चियां नू पढ़ा रहा, अच्छी तलीम दवा रहा, अच्छे पैरन वास्ते बस्तर देना, इसलिए ये दो आने उधार देंदा हां, जदों मैं बुढ़ा हो जावांगा ये मैनू मोड़नगे, मेरी सेवा करनगे। उचारण करो श्री आख्या, ते बाकी पैसे अखे दो आने मैं जमा करदा। कोई भी संत महात्मा महापुरख आउंदा है, बेनती करके उन्हों घर ले आना, भोजन कराना, ये मेरे दरगाह विच जमा ने, ते दो आने दे नाल आनंद नाल प्रसादे शकी देने, बड़ी कृपा है ईश्वर की। महापुरखां दी संगत मिलन करके मैनू संतोख आ गया है, मैं तृष्णा तो रहत हो गया। महापुरखां ने मैनू दस्या कि बिना सिमरन दे कोई होर सुख नहीं है, इसलिए मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके सत संगत विच बह के जपदा हां श्री, सेवा भी करदा हां, ते नाल नाल सिमरन भी करदा।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विकसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद आनंद साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है। इस राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा जी रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नियां, होर भी कई कुछ।

गोबिंद संग हाथ जोर जोर कहूं, श्री गुरु गोबिंद संग हाथ जोर जोर कहूं, आपके बचन की प्रतीत कौन मानगो। श्री गुरु गोबिंद संग हाथ जोर जोर

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा, गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए, समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करदे कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने, बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहिब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

गुरु के सिखा ये किसी दे अंक ना समझ ली, किसी दी लिखी हुई बाणी ना समझ ली। मैं आप कह रहा कि ए गुरु ग्रंथ साहब मेरा रूप है, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, इस दे विच किसे किस्म दा भेद ना जानी भी कोई किताब है जां कोई इलहाम होई हुई बाणी है जां कोई मार्गदर्शन वाली बाणी है, ए गुरु है। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किन्ना अदब गुरु ग्रंथ साहब नूं दिता, ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मनन दा अकीदा सिख दा दृढ़ करा दिता। गुरसिख गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं ही मन्नेगा, इस नूं ही नमस्कार करेगा, मत्था टेकेगा। साहब सचे पातशाह महाराज ने पवित्र वचन कीते ते कहंदे हन,

श्री साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणा च मत्था टेकिया। पंज पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतियां ते साहिब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहिब जी दे ते चरण हाथ विच ना आए ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया, इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया। सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति जोत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने यह वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मै ले। शब्द गुरु मन दिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती ते नमस्कार करके ज्योति जोत समा गए। उस समय का वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लिए है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत गोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।